0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंद बजना चाहिए गाना।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर रेडियो डीएस
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: हाँ माँ, बेटा पापा को हार्ट अटैक आया।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
4: राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीए 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हमने सुना भक्ति संगीत के दौरान अनेक भजन रचनाएं। और दोस्तों, अब चलते हैं हम पुराने फिल्मी गीतों की ओर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर रेडियो डी एस
2: पसंद मजाची है गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। और दोस्तों अगले कार्यक्रम की हमारी पेशकश रहेगी हेलो फरमाइश। दोस्तों इस कार्यक्रम को आप द्वारा सुना जाएगा 10 बजे।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: ट्यून इन किया आपने 89.6 रेडियो डीएस। और थोड़े दिन पहले ही जापान में भूकंप आया था, उसी पे मैंने रिसर्च किया और पाया कि भूकंप को कोई इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उन्हें सांप यानी कि स्नेक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब भी अर्थक्वेक आए उससे वो 75 माइल पहले ही पहचान लेते कि अर्थक्वेक आने वाला, और कई बार तो 5 दिन पहले भी वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब गंगापुर सिटी में अगर आपका कोई दोस्त प्रेडिक्ट करे कि अर्थक्वेक आने वाला है और अर्थक्वेक आ जाए तो वो आपका दोस्त नहीं, वो सांप है। फिलहाल गाने सुनो, बैक टू बैक 4 गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 6375। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धरती।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके, इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
5: गंगापुर सिटी की धड़कन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6,
5: गंगापुर सिटी की धड़कन।
1: रेडियो डीएस,
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: हेलो
1: नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: राजू लवानिया बोल रहा हूँ आगरा।
0: हेलो हेलो।
1: नहीं नहीं यार, थोड़ी सी बेटे बेटे कुछ ऐसी आ गई थी, नींद खुली तो मेरे पास थोड़े दस हो गए थोड़ा। चेहरा तेरा जब जब देखो प्यार आए मुझको, ये गाना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका?
1: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं।
0: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: लिखा है इन हवाओं में, लिखा है।
0: ओके मैम,
1: तू है मेरे लिए।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी मैम, क्या है इसका?
0: हाँ सुनो,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: आप आँखों को तेरी आदत सॉन्ग है।
1: कौन सा?
0: आँखों को तेरी आदत है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सही है
3: स्वादी। ओके

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम है ये सलवानी।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: चूली घर गंगापुर सिटी से मैम।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम है रेडी और गाने के बोल है हमको प्यार हुआ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

0: साथ है।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम सुरंज जैसी है।
1: कहाँ से बात कर
2: रहे हो? मैनपुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आज गाना सुनना चाहते हैं, ये रूपे करम अपनों पे सितम, ए जाने तमन्ना ये दिल मिला कर।
1: ओके सर, सुना रहे आपको सर मैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम जेकी है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं शराबी फिल्म का
0: गाने के बोल।
1: लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:28 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हेलो
3: हाँ जी नाम क्या है सर आपका
2: नमस्ते मैम मेरा नाम जय किशन है
3: जी कहाँ से बात कर रहे हो
2: मैं गंगापुर सिटी कोलीपाड़ा से बात कर रहा था
3: जी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे
2: मैं दिल जले का गाना सुनना चाहता था
3: गाने के बोल
2: कोई सा भी हो उसमें से
3: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना

झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: मैम।
1: नमस्ते जी, नाम क्या है आपका?
0: सईद मोहम्मद।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन से गाने सुनना चाहोगे?
0: यूपी से लाया कट्टा।

0: इतनी तो वाणा रद कर।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
3: 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के
4: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
5: हेलो।
6: हेलो मैम।
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
6: सुनील मीना।
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
6: गंगापुर सिटी से।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: 47 पहले करे।
5: ओके, तो सुना रहे आपकी फरमाइश। पहले गाना

0: में रेड मोदीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6,
2: गंगापुर सिटी की धरती, रेडियो डीएस।
3: पसंद रांची है गाना।
4: हेलो,
5: हेलो,
4: हाँ जी नाम क्या है सर आपका?
5: हाँ जी, योगेश जांगड़े भी मैं तरह 36 से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: शोले मूवी से कोई भी गीत सुनवा देंगे।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: हाँ जी मैम, क्या आपका कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बम लाया मेरा।
0: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राहुल गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सिद्धू मूसेवाला 295।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? हम बोल रहे हैं रेलवे स्टेशन से। मैडम,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? सर,
1: हम मर्डर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, डीजे और तुम्हारे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थोड़ा सुनाना।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: शिवम मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा नाम सुना चाहोगी?
0: बिल्कुल समझ जा रहा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: नाम क्या है आपका?
1: नाम उदल बैसला।
0: कौन कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: के आर देवता।
0: क्या

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
0: पवन।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? क्या सर?
0: थोड़ी देर और
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कर रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: राजा की आई है बारात मेरे आंगन में।
1: ओके, तुम्हारे यहाँ से गाना।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
1: मजा चाहिए गाना
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
3: तेज नाम क्या है आपका
4: नाम है बाबू खान
3: कहाँ से बात कर रहे हो
4: गंगापुर सिटी लखेरे की गली से
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
4: चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं
3: थोड़ा सा सही बोलो आवाज समझ में नहीं आई
4: ओ चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं
3: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए

0: नमस्ते जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: जम्मू से केशव शर्मा।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज मुझे सुना दिए मांग बोलो सर नगन का गाना जी, बरसों बाद हम मिले जादों के फूल खिले, थोड़ा इंतजार कर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डी एफ में सुन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6,
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6,
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस, गंगापुर सिटी का तड़का में आपका

0: एफडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैम, मेरा नाम अमन मीणा है।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: नसिया कॉलोनी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मेरा बदमाश हो गया
3: तो नहीं चलेगा,
2: तो गुलजार की चला दो।

0: इस मिनट का सिर्फ गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: कर दूंगी हम रात रात काटा मत भैया, कल ही बातें कर दूंगी फिर के लड़ ले फिर मार का बलो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मैम, सोनू नाम है मेरा।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बाल्मीकि का छोरा। बाल्मीकि का गाना है, हरियाणा से।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर गाना।

0: नमस्कार सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: शहजाद खान पुराने निजामत।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पांच वक्त मीनारों से आती है आवाज।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राजन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ओपले।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।
0: नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज जो गीत सुना है पिक्चर का नाम है अवतार, गीत है दिन महीने साल गुजरते जाएंगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आरू जी से।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बढ़िया गाना लेके आए हैं जी आप कुछ चैनल।
1: हाँ जी बताइए।
0: जब छाए मेरा जादू।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
0: थैंक यू जी, थैंक
1: यू, वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: बिल्कुल मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: बैरन।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएस साइंस अकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी 12th बोर्ड साइंस 2006

0: अब भी शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रही? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम कुलदीप सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: पेमापुरा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कुछ कुछ होता है
0: वो किसे सुना रहे हैं आपको? फरमाइश करिएगा ना।

0: कोमल
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: सिंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बागा माँ जब मोर बोले।
1: ओके मैम, सुना रही हूँ।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरा नाम भी आशा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:18 का है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।
1: पूनम और प्रेम यहाँ के हर मंदिर के दर्शन कर सके।

0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात करें?
0: पाल से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिल यू बहलता है मेरा आपका, आपके आ जाने से।
1: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम शीशु शर्मा है।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: मैं गंगापुर सिटी बाईपास से बात कर रही हूँ। क्या
1: कौन सी बात करना चाहोगे?
0: मैम वो ट्रेंडिंग में चल रहा है शीशा फॉगो।
1: ऐसे मैम सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चल जाएगा जल्दी, जल्दी ही चल जाएगा।

0: पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं।
1: हेलो
2: हेलो,
1: जी नाम क्या है आपका?
0: छोरे तेरे किस सांस अटक रहे हैं।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मुस्कान वर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गर्ल बन गई।
1: गर्ल बन गई?
0: हाँ।
1: उसके नाम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।

0: हेलो
1: हाँ जी ना क्या
0: किरण वर्मा गंगापुर
1: होगी किरण जी
0: ये दिन बताए तुझे क्या हुआ
1: एक

0: मेरे दिल से 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6,
2: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस,
3: पसंद बजना चाहिए गाना।
4: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन
3: रेडियो डीएस पसंद मचना चाहिए
4: दोस्तों। वक्त हो चुका है 1:11 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं थोड़ी सी चटपटी। गर्मियों के मौसम में बच्चों की कैसे देखभाल की जाती है। दोस्तों गर्मियों के मौसम में बच्चों को हमें बार बार पानी पिलाना चाहिए। नींबू जिसे नींबू है पानी, छाछ नारियल पानी और ताजे फलों का रस देते सकते हैं ताकि वे शरीर पे पानी की कमी ना आवे। हल्का वे पौष्टिक भोजन दे। गर्मियों के मौसम में हमारे बच्चों को हल्का वे पौष्टिक भोजन दे। तरबूज खीरा आम दलिया हरी सब्जी और हल्का खाना खिलाए। बहुत ज़्यादा तला खाना खाने से बच्चों को बीमार हो जाते हैं और उन्हें गर्मी में इतना भोजन नहीं देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में बच्चों को हल्का वे सूती कपड़े पहनाएं। कॉटन के ढीले और हल्के रंग के कपड़े बच्चों को आरामदायक देते हैं। पसीने जल्दी ही सूख जाते हैं। गर्मियों के मौसम में बच्चों को ज़्यादा तेज धूप की तेज धूप से बचाएं। दोपहर के समय पर बच्चों को 12 बजे से 4 बजे तक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाने दें खेलने के लिए। ज़रूरत हो तो टोपी या छावा लगाकर पानी की बोतल साथ लेके जाएं। साफ पानी का ध्यान रखें। साफ सफाई और पानियों का उनका ध्यान रखना। रोज बच्चों को नहलाए हाथ धो कर आदत डाले और पसीने वाले कपड़ों को दूर तुरंत बदल दे। इन्फेक्शन से बचें। बच्चों को गर्मियों के मौसम में पूरी नींद लेना जरूरी होता है। गर्मियों के मौसम में बच्चे जल्दी ही थक जाते हैं इसलिए उन्हें पर्याप्त आराम की नींद होनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में हमारे गंदी खाने से नालियों में कूड़ा कचरों से हमारे घरों में आसपास मच्छरें हो जाती हैं तो हमें मच्छरों से बचाने का कमरे को साफ रखें और आसपास भी सफाई रखें। मच्छरदानी या उसमें मच्छरदानी के लिए कुछ इस्तेमाल करें। लू और हाइड्रेशन के साथ संकेत पूछें। आगे बच्चों को बहुत सुस्त रेत और चक्कर आए, तेज बुखार हो या बार बार प्यास लगे तो तुरंत ही ठंडी जगह पर आराम दे और इसे डॉक्टर की सलाह जरूर ले। सुनते 89.6 रेडियो डीएस पर नहीं तराने। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।
0: रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
5: दिमाग ना हिला हुआ है तुम्हारा।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
3: हेलो दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
4: राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस,
6: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6
7: गंगापुर सिटी की धड़कन,
8: रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
9: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।

0: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डियास गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी अपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, थोड़ी देर में आप सुनोगे भुली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डियास पर।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।

0: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: वक्त हो चुका है।
1: हार कर सकूं मैं।
0: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। पुणे प्रयास करें 6378024475 पर कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। 89.6 रेडियो डीएस पर मैं

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
3: गंगापुर सिटी की धड़कन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धड़कन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

और दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6,
2: गंगापुर सिटी की धड़कन,
3: रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
4: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
5: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
6: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक, फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

0: का वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: रेडियो डीएस

0: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ भाई जी।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना है नींदों की रानी।
0: तो नींदों की रानी
1: जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परी गाना

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या आपका?
0: मेरा नाम पांजा है।
1: मम्मी से बात कर रही
0: हूँ। मम्मा कुछ सीखी से
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: हे गोपाल कृष्ण करो आरती।
1: ओके मैम, सुनिए आरती करेगा।
2: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस,
3: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: गंगापुर सिटी की धरती।

0: सर।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दिल कैसी है?
1: सर ठीक है। और कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: माशाल्लाह माशाल्लाह सूरत है माशाल्लाह एक हटाइगर।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: या न सुनना चाहोगे?
1: मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
0: क्या सर?
1: मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
0: सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा धीरज गढ़वा।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जैज़ यू।
0: कौन सा?
1: जैज़ यू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपके।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम है बाबू खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से की लकड़ा देवी कोठी के पास।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो जब याद आए बहुत याद आए।
0: कौन सा सर?
1: पारस मणि फिल्म का गाना है वो जब याद आए बहुत याद आए।
0: वो कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89
2: तो वक्त हो चुका है 5:12 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है राधा शर्मा जी की। राधा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश परिगा 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: मैं सुबह के ठंड से कम और बॉस की बातों से ज्यादा परेशान है। तो चार दिन पुरानी बात है यार, मैं किसी पर्सनल रीजन से परेशान था तो बॉस कहता है आगे और कैबिन में घुस गया बिना नॉक के कि यार मुझे बताओ ना, मुझसे बातें करो, मैं हल बताऊंगा, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की, जब तक बातें बताओगे नहीं सॉल्व कैसी होगी। अब आज सुबह की बात है, बॉस खुद ऑफिस लेट आया। मैंने पूछा आप आए क्यों नहीं, कहते मैं घर पे लॉक हो गया। तो मैंने कहा यार मुझे बताते। तो बॉस कहते क्या हो जाता उससे, मैंने कहा मुझसे कम्युनिकेट करते तो सोल्यूशन मिल जाता। बॉस कहते यार तुम चाबी कैसे ढूंढते। अरे बॉस कम्युनिकेशन इज द की, पर आप कहीं मत जाओ। बैक टू बैक आपके लिए मैं 5 गाने प्ले करने वाला हूं ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुजानापुर स्थिति की धरकर रेडियो डीएस।
1: हाँ, थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे, अरे अरे अरे अरे, ट्यून इन कर रहेगा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले, दाएं वाले, पीछे वाले, किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो, तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: सुनापुर स्थिति की धरकर
1: ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप। लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं, और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
1: हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का, सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSIS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम,
3: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6,
2: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।